मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई।

तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला,

मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण परदास। जिन हार हार हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताकारिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी। सत संगत मिले सुतरया गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाओ।

अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा।

हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करह हर पूजा जी तप

अवर न कोय। तू कर कर वेख है जान है सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होय। आसा महला पहला, तित

पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूठियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल

सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, काट काट

जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निरपकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड

महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरी कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई,

न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तू ही बखान्यो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द

दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सुवारना, सब नागला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विस

अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पार पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां थाल।

पुंचै तिसका हुए उदारु। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अप रख वेक मंदा किसनौ अखिय जहां सबना साहिब एक आप उपाय नानका अप रख वेक मंदा किसनों आखिया

विचे करें विथार नानक हुकम ना जानिए अगे काई कार महला पहला जिन सथाप जिया कौ भेज जिन सथाप ले जावै

0: गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल गानलो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती अनाता शब्द वाजन तेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नायक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध विन सहस तव गंध हे चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब में चानन खोए गुरसा की जोत प्रगट होए पावे सुवारती होए हर चरण कवल मकरन लोभित मनो दिन मोहे आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग कहो होए जाते तेरे नए वासा राग गौरी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर वो भरिया साधु कंडल कंडा है पूर्व लिप्त लिखे गुर पाया मनोहर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि तुम वड्डा है पर डंडा तुम वड्डा है रहाओ साकत रस साधना जाणिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुपे रूपा है जमकार सह सि डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो भुखंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्णी महला पंजवा करो मिलन की सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला घाट चलो हल्ला आगे बसन सुहेला और कटे दिन से नारे मन गुर मिल का सवारे रहाओ यो संसार विकार से महतरी हो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यागे हो रसकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहा जो हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे नानक दास
1: यह सुख मांगे कर संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा तो दया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने बोलो जी बोलना जी अरदास एक ओहंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरय कर नौ निदावे ताए सब थाई होए साए दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु दाता गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दर जी का ध्यान करके बोलो जी निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटिया दी ओट तन तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी आप जी दे चरण कमलां विच अरदास बेनती है आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा प्रतीत होया है सच्चे पातशाह अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी ने खुले दर्शन दीदार देखे निहाल कीता रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोहला साहब जी दी बाणी दा जाप होया सेवकां पासों बेअंत फुल्लां हो जांदियां ने महाराज जी अपने सिख सेवकां कीर्तनियां नूं सदा साज के निवाज के सब संगतां दियां तिल फुल भेटां मादर प्रवान करियो सतगुरु जी रहण आईए सुखमई आनंदमई बतीत करवायो सेवादार हाजर ने आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान हो अमृत वेले दर्शन बख्शियो सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी

0: il devo ne seguire di
1: sorso
0: lame in front ikka tujhe baaje rakhoge ne koi nahi suna akal ki to hello baaje mujhe rakhoge
1: ikka sir beti
2: haan ji पता नहीं कि सिलाई तो
3: एक बटर ही चलो
1: ये लाके जाना कि रख के जाना
0: बंद करने की जगह नहीं सब कुछ पता हो गया
1: हो गई
0: अनिली भी बाबा जी

नानक उन संग मोहे उदारु सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम राव प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ता कैला गो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ कै सिमरन

रसनामृत माहि समाई। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते। प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान।

को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

प्रभसात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम किन महे उदारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार के हो जाते केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याय नानक गुरमुख परम गत पाइय छूटत नहीं कोट लक बाही नाम जप तै पार पराई अनिक विघन जय आई सुंगार हर का नाम तत्काल उदार है

हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तहनाल पछानू जय महाप्यान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम परछाम जह त्रिकामण तुझ आकर कह तह नानक हर हर अमृत भर कह भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कह नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समात नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाई है, संत

प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसे त्या सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कतवर लुभावै। जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पहरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मान मुखता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गय मन पावै नानक पद सेती कर जावै। जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाओ तिस राम सनेही। जे प्रसाद तिरौ ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता कह। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सिमरो प्रभु उचे। जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वारस की जय। जे प्रसाद सब हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोय प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठ ते बैठ सत्य सहते आई। तिसे त्याय जो एक अलकै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बोधान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नेकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद पेख विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै। सा प्रभु त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता कौ जाव। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तुता सुराच। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मतु तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया तू कछु न किन्हु लया। जित जित लावु तित लगै हर नाथ नानक किनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुखु जल होत साध संग मल सकली कोत। साध के संग मिटै विमान साध के संग प्रगटै सुज्ञात। साध के संग बुझे प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा परमाय समानी। साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतु तावै साध संग स्थित मन पावै। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैरु साध के संग न भीगा पैरु। साध के संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हों ताप साध के संग तजै सभी आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनयाई। साध के संग न कब हूं तावै साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस सगु चरल है साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थानी उचै साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै।
साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय कर सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायनु, साध संग अमृत गुण गायनु। साधक संग सर्व थान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कचका हाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साधक दिवसै, नानक उधरै। साध संग रसै, साधक संग सुनो हर नाउ। साध संग हर के गुण गाओ, साधक संग न मंत्र बिसरै। साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै प्रमीठा। साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी। साध संग गत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग। नानक साध बेटी संजोग, साध की महिमा भेद न जानै। जेता सुने तेता बखियानै, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर। साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत। साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची। साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई। नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोय। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग खोला कै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक। ज्यो बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सहज सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक चिन्ह प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एकु प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले थावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक, उर तार है जो अंतर नाम,
सर्व में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या ना ही रस ना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रै रूप न पिक है नित्र, साध गिटैल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हर, मन की वासना मन ते तरह, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट में देखो ऐसा वर्ष, वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काऊ फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचय, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दिड़ै वरह नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मल खूवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तने अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म मैं सोदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के अवधे जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै, वेद प्राण सिमरत बुझै मूल, सूक्ष्म मैं जानै स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा

दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सकल संगातम उदास, सैसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा तुम्हें तावे, जीवन मुख सुख कहावे, तैसा हर तैसा सुख सदानंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिकाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत नानको पुर कहिए, जीवन मुक्त पार नम के सगले ठाओ, जित जित का रख है तैसा तिन्ना हो, आपे करन करावण जोग, प्रभावै सोई फुन हो, पसुरिया बंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भये निहाल, सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रची, पौ विदनिक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कबका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिगात्म निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश प्रमाहे, जित जित लाओ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जग किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे शुक्र मिर्गा, सब ते निरह सबू ते दूर, नानका फलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीव हमरै, कई कोट भोजुनी फिरह, कई कोट बैठत ही काहे, कई कोट काल तक पाहे, कई कोट कीर्तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय भाणा तह तै राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्मै पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, जिनको मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको आपसु प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बहुपात, प्रपति हुए प्रमाय समाता, कंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सास सास समारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कह, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार ने, जल थल मही अल सोय, अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योत पावै सोई होग, किन मैं तापु तापन हारा, अंतने किछ पारा भारा, हुक्मे धार धार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कार कर देखै अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै तां पत्थर तरावै, प्रभावै बिन शास्त्री राखै, प्रभावै तां हर गुण भाखै, प्रभावै तां पथ तुधारै, आप करै अपन विचारै, दोहां सिरिआं काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होइ आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसकै हाथ होइ तां सब किछु लेइ, जो तिस पावै सोई करे, अन जानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, भरमे भूला दै दिष्टावै, निमक माए चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक

0: किन संतन की बांचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाई है, पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुखमान। भूला काहे फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग। लपट रहे हो रसलोपी पतंग, राम नाम जप हृदय माही। नानक पत छेती कर जाहे, जिस वक्र को लैन तू आया। राम नाम संतन कर पाया, तज मान लिहो मन मूल। राम नाम हृदय महतूल, लाद खेप संत संचाल। अवर त्याग विखिया जंजाल, तन तन कह सब कोए। मुख उजल हर दर गै सोए, एहो अपार विरला व्यापार है। नानक ताकै सद बलिहारै, चरण साध के तुहे तुहे पियो। हर प्रसाद को अपना जियो, साध की धूर करहु स्नान। साध उपर जाइय कुरबान, साध सेवा वडभागी पाइय। साध संग हर कीर्तन गाइय, अनिक बिघन ते साधु राखै। हर गुण गाय अमृत चखै, ओट गही संतह दर आया। सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालन हार। भूखे को देवता दार, सर्व निदान जा की दृष्टि माहे। पूर्व लिखे का लहना पाए, सब किस जिसका करने जोग। तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी। सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया। नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत। तिस जन आवे हर प्रभ जीत, भगत पग सुनिए त्यो लोए। जाके हृदय को हुए सच करनी, सचता की रहत। सच हृदय सतमुख है, सची दिर सचा आकार। सच वर्त है सचा पासार, हार ब्रह्म जिन सच कर जाता। नानक सोजन सच समाता, रूप नरेख नरंग के प्रभ भिन्न। तिस बजाए नानक, जिस होवे सो प्रसन्न। अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानु की तू प्री त्याग। तिसते परे नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गैर कुबेर गहिर सजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बसंत। सा तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन ए नाओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कुर पाया सोई योग। हरन परन जा का नेत्र पूर, तिसका मंत्र ना जाने और। अंध रूप मंगल सर जाके, सर्ब तो सुनिए करता के। राज में राज योग में योगी, ताप में तपेसर गृहस्थ में भोगी। त्याहे त्याहे भगत सुख पाया, नान ते पुरका किन्यंत न पाया। जा की लीला कीमत नाही, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म कह जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जन दे, जनदास नाम त्यारे से। ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करेक रंग। नाना बिल की नो विस्तार, प्रभु नासी एक ओंकार।
1: नाना तीर्थ करे खन माहे पूर्व पूर्व सौटाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नान करनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेल प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे प्रियासा पवन नाम के संग उदरे सरुण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए अरूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सर जा की बाणी सत पुरख सा महेश बाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए ते सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरदे पाई सत बचन साधु देश सत ते जन जा किरे प्रवेश सत निर बूझे जे कोई नाम जप ताकत होए आप सत किया सब सत आप पे जाने अपनी मितगत जिसकी सिष्ट सो करने हार अवर नभूज कष्ट विचार करते कीमित ना जाने किया नान क्यों तिस पावे सो वर्तिया बिस्मण बिस्म पहे बिस्माल जिन भूजिया ते साया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के बचन पदार्थ लय ओए दाते तो काटन हार जा कै संग तरे संसार जन का सेवक सोवड़ पागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत ध्यावनार आप सत सा सब तारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत साजा सुनता बूजन हार को सा सब हुए नानक सत सत प्रसुए सात स्वरूप हृदय जन मान्या करण करावण तिन मूल पछानिया जा कर दे विश्वास प्रवाया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपो होए बसाना जे ते उजिया तिस माए समाना वस्त माए ले वस्त गड़ाई ता को पिन न कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानकेक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक कह मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जय दया प्रभु तारे, नान सो सेवक सास मारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गत मित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नान सो सेवक ले लिख पाया, नेकी कीरी मैं कल रखे, पसम करे लश्कर कोट लाके, जिसका सास न काटते आप, ताको राख दे करात, मार्स जतन करत बहु पात, तिसके करत बिरते जात, मारे राखे अवर न कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नान प्रभु अलख बिडानी, बारु बार बार प्रभु जपिए, पी अमृते मंत्र तृपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिज अवर नाही लिटाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जान तृप्ताने, मंत्र नामे नाम समाने, उठत बैठत सोत नाम, कहो नानक जन के सर काम, बोलो जस जे बाद रात, प्रभु अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह जाए, प्रभु अपने स्यों रहे समाए, जो होवा होवो सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कहे एक न जाने, आठ पैर प्रभ से अधूरे, कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिन की उठ ले, मन तने अपना तिन जान दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोका जाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सा पाप मिटावे, अवर सियाण सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवण जान ओ भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सतपुर, सतपुर के जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संसिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे,
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਮਾਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਵਿਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸੁ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਅਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਨਪ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਿਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰ ਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰ ਗੈ ਗਵੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤਿਆਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ, ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹ ਬਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ, ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾ, ਸਾਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਈ, ਸਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਕੰਧ ਕਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮੋ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਇ ਠਾਠ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਭਉ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ੍ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ।

अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरूपा समीत विसारु चरण कमल रिद मह उतारु करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एह तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन बाहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट उठतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचै मीत सो सुख साधु संग परी जिस शोभा को करै भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिको पावी रोग न जाए रोग मिटै हरव कदलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबुद्धो हर कहनाए दाद स्थाव त्या वैठाए ताको बिघन न लागे कोए जा कर दे बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाया तुम प्रगास तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन मरै सु काचु काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छुट नहारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटाम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्थार इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती रथ सुवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बेगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मातु लेने भगत बिना बह डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो जीत चरण कमल राखो मन बाहि जन्म जन्म के किल विख जाहि आप जपहु अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सारभू सत हर को नाओ सह सुभाय नानु गुन गाओ तेरी उत्रस मैल बिन सजाय हों मैं बिख पैल होय अचिंत बसै सुख नालु सास ग्रह सर नाम संभालु छाड़ सियान सगली मना सा संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार यहाँ सुख दर गय जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सा लाहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूरे प्रव्याप अनेक विस्तार एक दे भय कर राज पराचित गए मन तन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावू सास सास प्रभ तुम्हें त्यावू चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अंदे निविलाग बिड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयालु सेवक की नु सदा निहाल बंधन काट मुख जन पया जन मरण दुख भ्रम गया चुपुन्नी श्रद्धा स पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरु पूरै तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो कामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो वरै नाम जपावो भगत पाए तरियै संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास
उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तनियंतर ही सुहाओ नित्र उपेक्दर सुख हुए मन बिकसै सात चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कू पावै संग एक बस दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदपुर कारण करतार भगत जना कई प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत भाई लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजाल नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडे आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक परगास लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानकाया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्यु कछ न दृष्टि तापा पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब वैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क शोक हो किसे व्यापत जब अपन आप अपार ब्रह्म तब मोह का सोवत परम अपन केला वर्ती जानन करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक कह रगम अपार तब नरक सुर कौ कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योत रह तब कवन निडर कवन कत डर अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन या सुन तह जन्म मरण कहो कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गुचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गुचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आपा पिय चर जा नानक अपन रूपा पियो पर जा जह निर्मल पुरख पुरख

कौन अभिमानु जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत कौकीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तय किसै भू कवन तृप्तावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा पण संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै बेद कतेव कहा को चीन जब अपन आपा पुरतार है तो सगन अपसगन कहा विचार है जय अपन ऊचापन अपनीरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जय अचल छेद भेद समाया मुहा किसै व्यापत माया आपस को पया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आपा पतियारा तै कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को पह पहुँचा जे आप्रच्यो परपंच कार त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार पाप पुन तै भई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं बहु परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपकियान अपन खेल आप कर देख है खेल संकुच है तो नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसर पासारु संत प्रताप दुहु पाका या पेतनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौत करे आनंद चोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिसे अपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिला

कह दृष्टारु अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हारु अपै का विस्तारु जात पावे तर सृष्ट उपाय अपने पाने लय सुमाय। तुम ते भिन्न नहीं किज होए अपन सूत सब जगत परोए। जाकू प्रभ जीवा बुझाई सच नाम सोई जन पाई। सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता। जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख तिसको न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाई सब सिरे के निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत पार नानक दा सदा बलिहार। पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो बया। प्रतपाल जीन बहुपात जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस पावे तिसले मिलाए भगत करह हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक के जानिया। जन लागा हर एक कहनाई तिसकी आस न बिरथी जाय। सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। स्त्य पर नहीं विचार जा का मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर अंदिन पूज है गुर के पैर। हे लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रव्या पह मेले। सास संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद। राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत बचनर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ। आठ पहर प्रपिख हुनेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा। सुन पदे सिरदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो। हलत फलत दुए लिहो सुआ राम नाम अंतर उतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साज परिखिया। मंत्र नाम जपो लिव लाई दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी दर गैनी बह के तुम्हारी। एका टेक रखो मन वाहे नानक बहुर नया वह जाहे। तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रख नहार त्याए। निर्भव जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन हो उत्सुख। चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार। श्री ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसै सोत निहाल ताके निकट नयावत काल। अमर भय अमरा पद पाया सास नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाशु। हर कृपा ते संत पेठिया नानक मन प्रगासु। अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माई अनिक रंग नाना दृष्टाहे। नाउ निधि अमृत प्रभ का नाम देहि महेश का विश्राम। सुन समाद अनहत है नाद कहन न जाई चर्ज विषमा। तिन देख्या सब दिखाई नानक तेजन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत। तरन माही आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बंतिन पर्व तह पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दह दिशे समाही। तिस्ते पे नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। वेज प्राण सिमृत में देख सस्य सुन क्षेत्र में एक। वाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले। सर्व कला कर खेल है खेल भूल न पाई है गुण अमूल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार्यू स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म। संत जना सुने सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत। जो जो हुई सोई सुख मानै कर्ण करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार।
अनिक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपा भरपूर अंतर गज साप जनाए। नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूता वरतारा सर्व नैना भिख नहारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जा साप ही सुना। आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप तो रह, जो किछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां लै समाए। इस्ते हुए सुना ही बुरा उरे, कहो किने कछ करा आप ला। कर तू तत्नी की आपे जाने, अपने जी की आप साज धारी। सब साचूत पुत अपन संग्राज, ताकि गत मित कही ना जाए। दूसर हुए ता सोची पाए, किसका किया सब परवान। गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिसदा सुख हुए। आप मिलाए ले प्रभु हुए, हो धनवंत कुलवंत पतवंत। जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। धन धन धन।

इस जन को सदा नमस्कार सलूक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या को तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास गगन सागर तरो हर तन के परले हो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जीव गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत हो तुदार आप तरह लुक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द ना हतवा जय सुन सुन अनंद करे प्रभगा जय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए पैर भय सब रेन मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम साथ सुन लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेवा जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद या प्रभतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुनाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा था की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवै आवन जान हर

ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रभुत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कह मत सगल के उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता इह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो ने

प्रभु नाम, भगत जिन्ना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गावै को विद्या विखम विचार,
1: गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै भर देह,
0: गावै को जपै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर,
1: कथना कथिन आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट,
0: देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे,
1: हुक्मे हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह,
0: साचा साहिब साच नाए पाखे अपाओ अपार,
1: अखह मंगह देह देह दात करे दातार,
0: फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार,
1: महा के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार,
0: अमृत वेला सच नाऊ वडियाई विचार,
1: करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार,
0: नानक ए वै जानिए सब आपे सचियार,
1: आपिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए,
0: जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान,
1: गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए,
0: गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई,
1: गौर ईश्वर गौर गोरख बर्मा गौर पार्वती माई,
0: जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई,
1: गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विश्व

0: तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: असंख जाप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ,
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास,
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सते असंख दातार,
0: असंख सूर मोह भख सार, असंख मोन लिव लाए तार,
1: कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार,
0: जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर,
0: असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे,
1: असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे,
0: असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार,
1: नानक नीच कहा विचार, वारिया न जावा एक वार,
0: जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो,
0: असंख कहे सिर पार।

0: मन माह
1: सुख है भगत वसै कैलू करे आनंद सचा मन सोए
0: सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखा नजर निहाल
1: सुख है खंड मंडल वर भंड जे

0: ब्रह्मास्त्रं स्नानं
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं
0: नमो एष्ट एष्ट नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासि
0: अनुपे अरूपे समासल निवासी
1: सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध कर्ता
0: अदो उर्ध अर्धं अगं ओ गहर्ता
1: परम परम परमे

0: माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे
1: कोट तो रंग को रंग से कोदत पौन के गौन को जात निवारे
0: भारी पूजान के भूप भली बेद

0: हमारे तारियन
1: जौन जन सतर हमारे मार यह
0: दे मुझे अबरिय
1: मरण काल का त्रास बरिया
0: जो सदा हमारे पश्चा
1: दरिया तो जो करो रक्षा
0: लो मोहे रखन हारी।

0: करो रण करता
1: तक तब सरनी परे
0: तन के दोष दुख तो मरे
1: जवन पग परे तिहारे
0: तन के तुम संकट सब टारे
1: कल को एक बार त्याय है
0: ताके काल नगत न है
1: होए ताई सब काला
0: दोष रहस्य तरह तत्काल
1: दिष्ट तन जाहे नहर हो
0: ताके ताप तनक मह हार हो
1: सिद्ध कर्मो सब हो।

0: कठोर हो मोहो सहाय,
1: दुष्ट दोहते लेहो बचाए,
0: करी हम पर जग माता,
1: ग्रंथ करा पूर्ण सबराता,
0: सकल दी को हत्ता,
1: दुष्ट दोखियन को शह करता,
0: तुझो पे दियाला,
1: पूर्ण करा ग्रंथ तद काला,
0: बाशत पल पावे सोई,
1: दोख न तसाबे आबद कोई अड़ल,
0: गंग जाय सरसना पावे,
1: सुने मूड जत लाए चतुरताया भई,
0: दर्द पौ नित्य न तिन नर के रहे,
1: हो जो या की एक बार चौपाई को कहा चौपाई,
0: सतर सैंस
1: अर्ध सहत फुन तीन कह जा
0: सुधी अश्मीर।

सुख भाने अंदर बतीत होई, दिन चढ़े अपने भाने अंदर बतीत करवाना। गरीब नवाज इस वक्त दीवाना की संपूर्णता मुख रखते हैं। आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है जी। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते कृपा करो। पावन पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश करके गरीब नवाजी करो। अखरवाद घाट भुल चुक माफ करो। अगले दीवान सजाउंदी आग्या होवे। सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे।

सत्संगत जी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आशी गुरु पाशाह दसवीं प्रथम भगवती समरकाए गुरु नानक लई त्याय बिरंगत गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कानून दावताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पवित्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के गल बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया जपिया जिन्हें नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई ते वाई देख निड कीता तेना प्यार सत्यारा की कमाई दा अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सीर दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुआईया जरखड़िया से चढ़े आर न चढ़ाए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी से देखे संसा सिंह निभाया तेना की कमाई दा अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजाबत गुरुद्वार अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेताव है चित आवण का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब चंद्र चरियात देख देख की फतेह बृद्ध की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटन धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीमा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु जी बनवाज पंथ सदार सहाय दता जियो गुरुद्वारा ननकाना साहेब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ न छोड़िया गया दार से सेवा संभाल ददा अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु दता जियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रात ये की बनवाज जी आपके चरण कमल दरदास जी दता जी अपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मानव संत दर्शन दादे के निहाल दरदार जी निहाल निहाल किया बेहद बाणिया के पास ऐस वे राजेश सिंह राम के चरण पुत्र गुरबाणी आशा की वाद संपूर्ण कीर्तन किए छे पौड़िया आनंद साहब ने कीर्तन उतार कृपा करो हो भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सत्खंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदे उठाण की कृपालता करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी उठाने बल बुद्धि बख्शिश करो इस विचार विचार कर सरदार सरदार शरणजीत सिंह बीबी जसबीर कौर सरदार जसविंदर सिंह बीबी मनिंदर कौर सारे परिवार वालों सरदार दता जी अपने बच्चा बेटी नैना सिंह बेटा सिराज सिंह ग्रैजुएट होने की खुशी बेटी जीना सिंह की पढ़ाई की सफलता वास्ते बेनती कर दतार जी परिवार अज हफ्ता वाली कीर्तन दरबार की लंगर की तन मन धन सेवा कर दार बख्शिश करो भीरवाज जी इन्होंने खुशियां आप दखशिया दादा चो परिवार वालों पुत्र कड़ाप चाह देगा तैयार करे हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ जी रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जपे बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश दे प्रदेश रखा बख्शिश करो जी दतार बख्शिश करो आपके बखिया दाता परिवार वालों $2500 आपके चरणा पेटा के प्रवान दतार कमाइया सबन करो कार्ज वाधे बख्शो गिरवाज अपनी सेवक की सेवा प्रवान करो गिरवाज बख्शिश कर रहे बच्ची नैनक सिंह बेटा सराज सिंह बेटी जीना सिंह ने बच्चों तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुरसिखी नाम दाल बख्शो दतार बच्चे सोने जाबा दाल बख्शो गिरवाज बेटी नीना सिंह पढ़ाई में कामयाबी बख्शो और उच्ची विजय दाल बख्शो गरीब नवाज कृपा करो बच्चों सिर से मेहर पास रखना चाना जोड़ना गुरबाणी का प्यार गुरसिखी नाम दाल कृपालता करो जी दाजवाद रखो परिवार में सदा तंदुरुस्ती सुख चांदी चढ़ गल करनी परिवार ने सदा शुभकामना वास्तव माता पूरिया करनिया सदा अपने चरण सेवा की दाल बख्शी चाहिए कृपालता करो मेहर करो अमृत वेले तो लैके दरती आई साफ संगत आशीर्दार प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत दरते तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी बनाए कृपा करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया संघा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो टैली कला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना कृपालता करो गुरु बनवाज खालसा पंथ सिंह कौन एकता विश्वास प्यार की बख्शिश करके सत दो दाल बख्शो चाना जोड़ो कि मंडा प्यार कृपालता करो गुरु बनवाज दूर दराज कर बैठिया लाइव कथा कितनी शर्म करी हाँ सारी सिर्फ हाल जी अपने हाथ रोकनिया लिखे लाओ
ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਹਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇ ਭੇਟਾ ਕਾਰੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲਾਓ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਆਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਲਾਮੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰ ਬਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਸਵਾਦ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਥਕ ਦਰਵਾਜ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਦਰਵਾਜ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਦਤ ਆ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

0: विवेक सतसर। सतन सिंह भगवान करना जी, अगला जड़ा प्रोग्राम है मान योग सकत्र साहब जी कुलवाल जी सरवण करो, अपना चुका लिखीमा पते सांझी करो जी।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे, दया करो किश मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पुत्र राहिबदार दियां हारियां भरके राही बन कीर्तन कथा सरवण करके साहबां दी बख्शां लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ आप गुरां दी बख्शी फतेह सांझी करन दी कृपालता करनी सब ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शायद मैंने सुनिया नहीं कोई, मैं चाहता दास आओ फतेह सांझी करिए जी। फिर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। फतेह गुरु दी है, मेरी नहीं जी। बड़े प्यार नाल बेनती है आपके चरणा च फतेह तो डरदे ना रहिए, उते गुरु ने बख्शा करनिया। एक बारी वाहिगुरु जे उन्हें प्रवान कर लिया पता नहीं किनिया बख्शा कर देनिया ने। उन्हूं पता है तो आपां नूं नहीं पता, देने वाले नहीं पता है आपां नूं, तां आपां तां लैण वाले हैं। सोचना संड कट के वो तो वह हिस्सा पाने की बेनती की जाती है नॉर्थ से साउथ साल की बिल्डिंग लिए। दूसरी सूचना सहज पाठ जो आप घर सरबद्ध भले आरंभ किए थे जहाँ के भोग पूरे भोग से कर लाया ज पाला भोग, उन्होंने अरदास बेनती होनी हैगी जी। आते ऐतवार भोग पैना सवेरे 10 बजे इतने मेन हाल च, 10 बजे तो पहला आप जी ने विराजमान हो जाना आके। जे हाले ना नहीं दिता तो टैक्सट कर दौ 408-712-4145 से। अज ना कल की गल कर ली, कल संगरांद हाड़ की हैगी सवेर शाम कीर्तन दरबार 16 परसों तो शुरू कर रहे हैं सुखनी साहब के पाठ शाम को। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की महान शहीदी समा हैगा सुखनी साहब का शाम के 7:30 लैके 8:45 तक। तो शहीदी साहबां की है जी 18 वो अपन सवेरे शाम प्रोग्राम रखिया, पर ऐतवार 21 सारा दिन प्रोग्राम चलना हो। तो बाकी सारिया सूचना छड़ जानियां। एक देरवा हूँ गुरमुख कैंप वह दाखला शुरू आ, फ्री गुरमुख कैंप बच्चा है इतों की सेवादार कमेटी वालों लाया जा रहा। 6 से 15 साल के बच्चे बच्चे दाखिल करा दिए उत्थे जी। कैंप का समा नोट कर लो टाइम 13 जुलाई तो 17 जुलाई तक जी। आओ हूँ भाई साहब हरभजन सिंह डैरी आप जी ने कीर्तन सरवण कराउणगे ठीक 12:10 तक। 5 मिनट उन्होंने मैंने दे देने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम सारे भिखारी जियो मैं क्या मांगू किसते न रहाई हरदी जय नाम प्यारी जियो धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन दरबार दहाइए पर के बख्शा लैरी परम सकार जियो सत्संग जियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सन सरदार कृपाल सिंह जी तवार साडे गुरु घर के हैड खजांची जिन्होंने आप जी हर महीने की तरह अज भी संखेप रूप सारा हिसाब किताब दस दिता है बाकी हिसाब किताब अपन पता वैबसाइट से है सारा सो उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हूँ मैं बेनती करा पंडित मान विद्वान से कथाकार सत्कार योग्यानी सिकंदर सिंह जी ने कि वो आप जी कथा सरवण पाउणगे ठीक 1:10 तक नहीं ये सॉरी 12:50 तक सॉरी 12:50 तक तो उस बाद बाकी प्रोग्राम सूचना मैं पहला दे चुका दास फिर बाद देवगा हूँ कथा तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।